लगर ची छोबी सायना डीजी जे मिदुंजम टुबनाबा श्यालांगा जुमंतु मौंसु जे डीजी छोवा न्यानोंगुं बिए लजिसेंदो